0: ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସମାଚାର ହିନ୍ଦୀରେ, ଯାହାକି ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है।

0: उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

14 किलोमीटर पर आवर रे पवन बहिब बस ए खरा दिन रे बस इतिकी कहिबी आम पाखरे प्रचुर परिमाण रे बेलपणा हैला लेंबूपणा हैला ए सब पणा जहां आमे घरोई पानी हिसाब रे प्रस्तुत करि परिबा दही पणा हैला ए सब आमे पी परिबा निजे को सुरक्षा दे परिबा एवं निजे को हाइड्रेटेड रखि परिबा काहे कि ना प्रबल रु प्रबल खरा होउछि त ए समय रे आमे निजर जत्न निजे नै परिबा।

0: आईपीएस अधिकारी इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोध प्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से

समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारीख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर माननीय सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यहार सविशेष विवरणी पई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 151 00 रे जोगाजोग करंतु।

यूज करिबे एवं सेथिरे पीएफए फॉर्मूला कौन रहिबो से विषयरे भी कथा हवा किंतु एबे पई ए ब्यूटीफुल संगीत कुमार सानु का कंठ रे एंजॉय करथांतो केवल और केवल आपनकर अति प्रिय एफएम स्टेशन सहित देव मित्र सहित 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल से दिल तक स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आपण मन ट्यून कर शो दे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दिल से दिल तक कोण दिल से दिल तक कृते वो मित्र आज आपण अंक सहित सोशलची शुभ सकाळ र नामे कथा होचे सनस्क्रीन को नेकी हां फेस वॉश क्रीम मेकअप ए सबो तो आपण निज सौंदर्य पई करंती किंतु सूर्यक तीव्र किरण रो निज चर्म को सुरक्षा दबा कथा केते थरा आपण मन रखु चांदे अनेक भावंती आज तो टिके मेघवा पाग हेछि सनस्क्रीन लगेबा कोन दरकार किबा आज तो मु घरे अछि बाहर को जाउनी मु सनस्क्रीन काहे के लगेबे किंतु आमे एठी मन रखिबा दरकार जे यूवी रे तिबा किरण आम चर्म को प्रभावित करि पारे तेनो मु त निहाते आज आपण को ए प्रश्न पचारिबे जे आपण घरु बाहर थिबा बेले को जिनसटी भूलंतिनी निज चश्मा ना निज मोबाइल ना निज पानी बोतल ना निज सनस्क्रीन ऑब्वियसली 85% जे माने निहाते कहिबे कि से माने निजर सनस्क्रीन को भूलंतिनी किंतु आपण माने कोन भूलंतिनी निहाते भाबरे मते जणि भी पारिबे हमर व्हाट्सएप माध्यम रे आपण निहाते जणि पारिबे 8895254200 साजे किंतु हां मने रखतो चर्मर जत्न केवल सौंदर्य नुह स्वास्थ्य मध्य गोटे बहुत जरूरी अंश हाँ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी

0: को बदला जा रहा है,
1: एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं
0: और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं।
1: ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
4: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
5: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती।

0: होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।

धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से

0: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत, पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: I want to talk about a country in front of the country. देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट

ट्यून करू शकते आपण 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक रे देव मित्र आज आपणक सहित समय वर्तमान स्टूडियो घडी 8:43 आसंत वर्तमान समय सुनी नवा आपण समस्तंकर पसंद रा कार्यक्रम मो पसंद केवळ केवळ आपणकर अति प्रिय एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे

0: सिंहपुरु
1: अंतर आत्मा रे रही अछ प्रभु सदा चाहे मो तुमको प्रतिटि मुहूर्ते खोजु अछि प्रभु भक्ति टिके पाइबाकु
2: जानिछि प्रभु मु रही अछ तुमे सदा मु साथी साथी जन्मरु रही छ रहिथिब मध्य मु जुई जळीबा पर्यन्ते
1: मो मनरे प्रभु तुम पई अछि केते भक्ति और श्रद्धा आपणाई निय तुमे मते प्रभु करि भौणी सुभद्रा

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: गीतापरी वेलकम बॅक. आपण मला ट्यून करची आणि 100.4 आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटकदल सदलतक वर दल सदलतक रे देव मित्र आशा आपणक सहित डार्लिंग शो को नेके चालू तो देखिबा नेक्स्ट आमर कलर के आशा ने अनसी कोन कहू जांदी आजर टॉपिक को नेके. हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग के कहू जांदी कोठ कहू जांदी.
1: मॅडम नमस्कार, मी सत्यव्रत साव जाजपूर कोठ.
0: नमस्कार, किमती अछंती आपण?
1: हम भलो अछि.
0: अच्छा आपण रोसी करी जानंती? फर्स्ट क्वेश्चन तो मोर आपण को एयर होइबो.
1: हां हां हां निश्चय जानि जे एकर होजी माने निश्चय रोसी करी खाउ जे.
0: यस हां आपण ताले हॉस्टल रो आगु को बढी जंदे ना एबे जॉब पई एकर हो जंदे?
1: ना ना जॉब पई करो जे हॉस्टल में जॉब पई.
0: अच्छा ताले तो आपण निजे रोसी करबे निहाती जानिथिबे ना कोनो?
1: निश्चय निश्चय
0: निश्चय सब प्रकार आइटम बनंती ना? नाही गोटे कथा कहतु आप बाहर रोचान कर्म को लेकिन जब घर को जाती से घर लोक रोसे रे हेल्प करते ना भावते कि नहीं घर को आसने रिलैक्सिंग कर
1: मोर बाहर देखा देखो मुझे फुल रुटी कर
0: घर को आसे बेले बहादुरी देखिए अन्य हेल्पिंग खुशी लगे कि आज गोटे टेस्टी रांधी मो हाथ रंधा खाई किए कौन कहते निहाती भल लगे. अच्छा कहते ये गरम रे रोसे करते कष्ट हुए?
1: निश्चय कष्ट ड्यूटी सारी मैंने आठ घंटा ड्यूटी सरला निजे रोसे कर खाइबा खरा जहाँ होती गरम जहाँ होती निहाती कष्ट
0: घर को टिके टिके मिस भी करू थे कथा
1: कुछ
0: ठीक अच्छे सप्ताह को थरे जाऊे तो रोसे घर आड़े हेल्प कर दिखा. ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप कथा बहुत भल लगे. नमस्कार आपण भी कॉल करी परबे ऑन द नंबर 0671230313 रे एवं शेयर करी परबे आपणक कहानी मो सहित. यस ई खरा गरम रे आपण केते हेल्प करूछें रोसी घरे निहाते भाबले शेयर करू. चलन देखिबा हमरा नेक्स्ट कॉलर के आछन एनसी कोन कहू छन आज रे टॉपिक को नीकी. हेलो
2: जय मां सारा देवमित्र भण नमस्कार.
0: जय मां.

उनका फरमाइश है मस्त चलचित्र से रुकी रुकी सी थी जिंदगी। जरूर आपका फरमाइश वाला सॉन्ग मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और वो लिख रहे हैं कि प्रिय आरजे देवमित्रा जी, एफएम रेनबो कटक के परिवार को हमारे तरफ से ढेर सारा बधाइयां और आपके द्वारा प्रस्तुत बेहतरीन कार्यक्रम का आनंद हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ से। श्योर आप इतने दूर से हमें मैसेज कर रहे हैं तो आपको ये गाना मैं श्योर डेडिकेट करूंगी। तो चलिए सुनते हैं बैक टू बैक ये दो ब्यूटीफुल गाना।

गुड मॉर्निंग नमस्कार ट्यून कर छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटा डीपी हाजिर हो जाइए आपन का पाखरे रहबो पूरा दिन आपन का सहित सुनेबो दिल रे हालचाल ता सहित हबो म्यूजिक रो बरसात सो फ्रेंड्स वर्तमान दिन रो गोटे एमती समय रे ऐसे हमें पहुंचे छे जो समय रे हमें समस्ते निज निज काम को नहीं व्यस्त हो जाऊ किंतु ए समय रे ठीक हमर मन पड़ी जाए कि आमे एमती गुटिए सो सुनिबा जो सो रे आमे सेमती किछि कलाकार को विषय रे कथा बा जो मनकर अवधान रही छि आमको एंटरटेन करबा क्षेत्र रे दिन 11टा दिन रे ई समय रे आपण सुनंती द सो कलाकार जेउथिरे आमे कथा हुए किछि कलाकारक विषय रे तबे आज भी एई शो रे आपनको पई डीपी नै आसिछि सेमती जणे कलाकारक कथा जेहांको आपण टीवी परदारे सबुबेळे देखि आसिछन्ति सिनेमा परदारे मते देखि आसिछन्ति आज आमे एमती जणे एक्टरक विषय रे कथा बा जे केवल रील रे नुहे बरंगा रियल लाइफ रे भी नवाब बोलांती यस फ्रेंड्स आज हमें कथा हवा बॉलीवुड रो छोटे नवाब का विषय माने सैफ अली खान का विषय कथा तो आगो को एमती जारी रहबो किंतु सो आरंभ करबा पूर्वरु एबे सुनै दु छी आपन को तांकर ई सुपर हिट गीत कोड़े भी जानतो नहीं ट्यून करथान तो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक वन को तांतो दिल से दिल तक

0: प्रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा।
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

Welcome back, friends. Tune करिचंती 100.4 आकाशवाणी FM रेन वो कटक को डीपीओ छे अपन को सहित and so चली छी कलाकार फ्रेंड्स आज हमें कथा हो छे कलाकार सोरे बॉलीवुड रो छोटे नवाब तथा सैफ अली खान नारी आम जो स्टार को जाने विषय आज कलाकार विशेष भाव में आलोचना करूचे तेज जदि पर्सनल लाइफ विषय देखा अगस्ट 16, 1970 दिल्ली में जन्मग्रहण करती सैफ अली खान पिता क्रिकेटर मंसूर अली एवं माँ विशिष्ट अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को कोल में जन्म नहीं सैफ अली खान स्टार किड हुई भी बॉलीवुड रे निज स्थान पक्का करने तांकु भी स्ट्रगल करिवा पई पड़ीथिला पिलाटी दिनरु अभिनय प्रति रुचि रखुथिबा सैफ अली खान प्रथमे 1993 रे परंपरा चलचित्र रु आरंभ हुईथिबा तांको बॉलीवुड जर्नी रे से संघर्ष रो प्रथम सोपान आरंभ करिथिले जदियो तांकु ए चलचित्र माध्यम रे कोनसी

बॉलीवुड रो ई जणासुणा ना सैफ अली खान 2010 मसीह रे पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित होवंती ई सम्मान ही बयान करे से केते बड़ स्टार रियल दुनिया रु रियल दुनिया पर्यंत सबुठी निज को फिट बसाई परिछंती सैफ अली खान निज को सबले फिट रखिवा पई फिटनेस एवं डिसिप्लिन जीवन रे सफलता रा रहस्य बोली से मानिथांती व्यक्तिगत जीवन कथा जदि देखिबा 1991 रे अमृता सिंह को विवाह करथिले जहां 2004 रे विच्छेद रे परिणत होइथिला समानकर दुई संतान सारा अली एवं इब्राहिम अली खान वर्तमान सुधा बॉलीवुड रे मध्य पाद दबा पई समस्ते प्रस्तुत हि सरिछंती परवर्ती समय रे 2012 मसीह रे बॉलीवुड रो बेबों को विवाह करंती सैफ अली खान

Welcome back, friends. Tune karchanti 100.4 Akashvani FM Rainbow Ghatakku DPH Avanaka Saita. समय वर्तमान 11:30 माने आपण निज निज काम रे जोग दे सारथिबे केही केही कोनोसी गंतव्य स्थल को जाउथिबे केही केही निज घर काम रे व्यस्त थिबे ता सहित हमकु भी सुनथिबे तबे निहाती भाबरे जदि रास्ता रे जाउछंती ताले निहाती भाबरे निज सुरक्षा प्रति विशेष भाबरे ध्यान

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर छथि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को सो चली छी किछि कथा किछि गीत मो छी अपन को सहित अपन को डीपी किसम पूर्व अपन को कहूतली कि जते बेले मन मिसि जाए कहा सहित जति मन मिसि जाए तापरे केमिति सबु स्वप्न रंगीन हे जाए मन चाहूबा मनीष पाखरे मन रही मनर सब आशा अभिलाष जमी पूरा हो लगे लगे जमी हाथ मुठारे सबकि अच्छे हाथ बढ़े जमी जन भी हाथ पापुली आसी धरा दे दब जीवन हठात सुंदर हो जाए आ सबकि बदली जाए जीवन रास्ता नुआ लगे आई रास्त जीवन साथी जितेबाला आपण हम सफर साजती सही समय रे सही सुंदर रास्ता टी प्रेम रूपक गाड़ी रे परिवर्तित हुए आपण को नहीं चाहिए एमती एक दुनिया को जो दुनिया रे आपण एवं आपण को मनर मनीष खुशी रे सारा जीवन एमती हसी हसी जीवन बीते दिखते

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों बालकनी छतों दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modality.

समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारीख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यार सविशेष विवरणी पई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 151 00 रे जोगाजोग करंतु।

समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।

0: प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है, जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और दो फॉर्म लेके जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर

0: तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरल में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुत्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र

0: और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता
1: नमस्कार आकाश

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर छथि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को। डीपी अछि अपन को सहित टाइम एबे दिन 3:00। फ्रेंड्स दिन 3:00 आवा सहित आशा करू छी अपन समस्ते निजर लंच सारी सारी थिबे, खरारु दूरेक रही थे, निजकु सुरक्षित रखी थे। एवं खरार प्रकोप जेहेतु मे मस चली छे, मे मस रे खरार प्रकोप विशेष भाव में देखा मिलूचे, तेणु निहाती भाव निजकु सुरक्षित स्थान रे रखंतु। ए समय रे खरा समय रे बाहर को जेते चेष्टा करूछंती, जेते कम बाहर को चेष्टा करंतु, एवं जदि भी बाहर छंती कोनोसी जरूरी परिस्थिति रे सेते बेले निज सहित पानी बोतल छता सांगरे नी चालंतु, एवं निजकु सुस्थ एवं सुरक्षित रखंतु। सो फ्रेंड्स, टाइम जेहेतु 3:00 बाजि सारी, यहा सहित आरंभ हो जाइछि हमर देशभक्ति कार्यक्रम मो देश। आज मो देश रे आमे कथा बा गोटे एमिति वाक्य जहा प्रत्येक भारतीय मनरे एक स्वतंत्र गर्व आनी दिए, से वाक्यटी होउछि एई मो देश भारत। ए वाक्यटी केवल गोटे कथा नुहे, एहाकु कहिबा बेले भारतीय मनरे देशर महानता संस्कृति और परंपरा को मने पकाए। कथा हवा पूरा घंटा एहरी उपरे, किंतु ता पूर्वरु ए गीतटी केवल आपणक पई सुनुतांतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को, एंड कहुतांतु दिल से दिल तक।
1: इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक। सो चलिछि मो देश भारत हेउछि सहनशीलता, धैर्य एवं मानवीयता एक प्रतिमंत्र प्रतीक बोली विश्वास करे। यहा सारा विश्व रे विरल देशर माटी, पानी, पवन सबुथिरे आत्मीयता भरी होइ रहिछि। आम समस्तक मनरे प्राणरे सबुबेले भारतको नै एक भिन्न आत्मीयता रहिछि, जहाँको शब्द किंवा भाषारे प्रकाश गरिबा एक प्रकार असम्भव अटे। किन्तु तारि भितरे देश पाई प्रेम, स्नेह, भक्ति पाई आज आमे समस्ते एक होइ रहिपारुछौं।

नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो, कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो घड़ी रे टाइम वर्तमान अपराह 4:00 गोटे मिनिट एक सेकेंड आपण सहित मुझे जोड़ी आप म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी टिल नाइट 11। सो फ्रेंड्स, आपण पहुंची ढेर सारा मेलोडियस म्यूजिकल ट्रैक एंड सहित ढेर सारा कथा बार भी अच्छे आपण सहित आपण सुनैबे किछि आ मु सुनैबे किछि। Let's dive into this musical journey with Subi only on 100.4 Akashvani FM Rainbow, Katak Dil Se Dil Tak. So start hi jai chi Surila afternoon ra, ta Surila afternoon ko Surila start to bapai apadang ka pakare pahunche do chi first and first Arijit Singh ka awaz de gote khas track and then apadang ka pakare pahunche feri bhi.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज आमको गोटे स्वतंत्र आईडेंटिटी एवं आम निजर प्रिजर्वेसेस प्रदान करिथाय। विभिन्न फेस्टिवल्स एवं फंक्शन जरिया रे इटा सबुबेले जीवंत ही रहिथाय। जेतेबेले आमे समस्ते मिसि एकाठी कोनोसी ट्रेडिशन सेलिब्रेट करू, सेतेबेले हैप्पीनेस डबल ही जायथाय। सो फ्रेंड्स, फैमिली ट्रेडिशंस गोटे स्ट्रिक्ट रूल नुहे, बरंग फैमिली रो यूनिटी को रिप्रेजेंट करे थाए। हाँ फ्रेंड्स, फैमिली ट्रेडिशंस रो पावर आमकू आम सोसाइटी रे गोटे यूनिक स्टेटस दबारे सहाय्य करे थाए।

ya apnanga sahita. Friends, aajra ei technological life bahut hi busy hi galani. आउ आमर ए बिजी लाइफ शेड्यूल भितरे आमर फैमिली ट्रेडिशन ही आम समस्त को एकाठी गेट टुगेदर हबार सुजोग दे थाए फैमिली ट्रेडिशन को एंजॉय करिबा पाई वर्क प्रेशर भितरे भी लोके फैमिली पाई क्वालिटी टाइम बाहर करि थांदे आउ ए क्वालिटी टाइम आम को जेतिकी मेंटल पीस दे थाए सेतिकी आत्मसंतोष भी दे थाए फ्रेंड्स ए ट्रेडिशंस जोगु फैमिली मेंबर्स को भीतरे थिबा डिस्टेंस को सहजरे दूर करी हे थाए एंड एटा मो रूटीन लाइफ को आहुरी सरस एवं सुंदर करी गढ़ी तले सो फ्रेंड्स आपण भी माने पको थांतो आपण करे ए फैमिली ट्रेडिशंस गुडी को एंड जोडी हे थांतो आपण कर फेवरेट एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सहित एंड कहू थांतो दिल से दिल तक Keep enjoying. Stay tuned.

नमस्कार, एफएम हेडलाइन सह मुसुकन्या। राज्यरे शिल्पायन वृद्धि ओ स्थानीय लोकंको नियुक्ति उपरे सरकार गुरुत्व देउथिबा कहिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पारादीपठारे 65,000 कोटी टंकार अत्याधुनिक नूतन समन्वित इस्पात कारखानार शिलान्यास करिसेंति मुख्यमंत्री। कारखानार शुभारंभ परे 30,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबा नै से आशा व्यक्त करिसेंति। वृद्धि पाउथिबा ग्रीष्म प्रवाहको दृष्टिले रखि सतर्कता अवलम्बन गरिबाकु देशवासीको परामर्श दिछन्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। ओडिसार खालिथिबा गुटी राज्यसभा आसन पई आसन्ता मास 18 तारिखरे उपनिर्वाचन हेबो। चलित शिक्षावर्ष स्नातक पाठ्यक्रमरे नामलेखा पई आजिठारो आरम्भ हेउछि आवेदन प्रक्रिया। आसन्ता मास 17 तारिखरे प्रथम पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। भारतीय सेनारे अग्निपथ ओ नियमित क्याडर पई अनलाइन प्रवेशिका परीक्षा आसंता मास पहिलारु आरंभ हेबो। राज्यर 17टी सहरर 26टी केन्द्रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। सुस्थ वृद्धावस्था पई योग शीर्षक वार्ता नै आसंता मास 21 तारिखरे पालन कराजिबो अंतर्जातीय योग दिवस। इजराइल आक्रमणरे हमासर सामरिक कमांडर मोहम्मद उदेयंक मृत्यु होईछि। केन्द्रमन्त्री अश्विनी वैष्णव क्याबिनेट बैठक सम्पर्कले विस्तृत सूचना दिइ कहिछन्ति भारत विश्वर सर्वबृहत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम माध्यमरे प्राय 80 कोटी लोकंकु मासिक राशन सहायता प्रदान गरिछि। साधारण बण्टन व्यवस्थाकु सुदृढ करिबापै सरकार 25,530 कोटी टंकार सार्थक पीडीएस योजनाकु अनुमोदन करिछन्ति। आजि आईपीएल क्रिकेटरे एलिमिनेटर पर्याय म्याचरे सनराइजर्स हैदराबादकु भेटिबो राजस्थान रॉयल्स। वर्तमान पई न्यूज हेडलाइन्स यतिकि, परवर्ती न्यूज हेडलाइन्स सुनिपारिबे सन्ध्या 6टा समयरे।

सो फ्रेंड्स आपणक सहित एमती मीठा मीठा टॉपिक विषयरे मीठा मीठा कथा तो जारी रहितबो किंतु ता भितरे पहुंची दोछि आपणक पाखरे कोडे बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक सो स्टे एन्जॉयिंग एंड कीप एन्जॉयिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: म्यूजिकली योर 100.4 एकस बानी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचाली छी डायल इन लाइव चिट चैट रन मो छी आपनंगर म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुभि आपनंग सहित सो हम सते जुड़ी जी छंती हमर नेक्स्ट कॉलर चलन तो कथा हिच बातांक सहित एवं सुनिबा के शिक्षा क्षेत्र रे टेक्नोलॉजी केमते हमको हेल्प करी छी। हेलो गुड आफ्टरनून के कहथिले कोठ कहथिले
1: गुड आफ्टरनून के नारायण पत्र बारीपदा मयूरभंजरु।
0: नारायण भाई आपनको हम कार्यक्रम को स्वागत कोन कहबे आजर टॉपिक विषय रे
1: आपनकर आज गुडे सुंदर टॉपिक रखछंती शिक्षा क्षेत्र रे टेक्नोलॉजी। शुणु शिक्षा हूँ मनीष को एजुकेशन बढ़ाए एवं टेक्नोलॉजी मनीष को आप मानने ये शिक्षित मानते शिक्षा शिक्षित कराए मान क्वालिटी बढ़ाए टेक्नोलॉजी क्वालिटी बढ़ाए शिक्षा
0: शिक्षित कराए
1: मान शिक्षित कराए एणु टेक्नोलॉजी न शिक्षा थिले टेक्नोलॉजी नथिव किछ लाभ होबोनी टेक्नोलॉजी शिक्षा थाकि लाभ न थाए एणु मनीष गोटे तालीम प्राप्त हेबा दरकार एणु माने क्वालिटी आउ क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन टा शिक्षा रे बढ़ाए एवं क्वालिटी टा बढ़ाए टेक्नोलॉजी रे
0: बहुत सुंदर।
1: मोर कहार कथा होची टेक्नोलॉजी निहाती मनीष पाखरे रहिबा आवश्यक एणु टेक्नोलॉजी शिखिले से दुनिया को किछ आगे पारिब टेक्नोलॉजी उपरे बहुत उन्नत हेलानी पिलाने शिक्षा क्षेत्र रे आगोचंती एवं ता सहित टेक्नोलॉजी भी शिखिबा आवश्यक माने उभय उभयर परिपूरक
0: निहाती भाई बहुत सुंदर कथा कहले कि शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी परस्पर रो परिपूरक एटा समस्ते निहाती भाबरे सुनिथिबे जो माने भी सुनिथिबे समस्त को ए थॉट टी निहाती भाबरे आपनकर भल लागिथिबो आपन एति सुंदर मतामत हम सहित शेयर करले सेति पाई नारायण भाई आपनको दिल से धन्यवाद।
1: जय जगन्नाथ।
0: जय जगन्नाथ। तो ए नारायण भाई सतरे शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी परस्पर रो परिपूरक शिक्षा सहित ए क्वालिफिकेशन रो क्वालिटी बढ़ी पारी टेक्नोलॉजी जरिया रे सो कौन रही आपणकर थॉट शिक्षा क्षेत्र रे टेक्नोलॉजी रो कौन रही भूमिका से विषय रे डायल करी जणंतु आमको एंड डायल करंतु 0671230315।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक। स्टूडियो खड़ी समय वर्तमान संध्या 6:05:23 आपण सहित मुझे आप म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुभी। वर्तमान सुनंतु आज प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 30 भाग शुणे 6:10 भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणे 6:30 राति 7:25 शुणे कार्यक्रम संध्या आसर गीतरे मितरे शुणे राति 8:02 राति 9:15 शुणे कार्यक्रम अभुला स्मृति राति 10 मनपसंद गीत रिक्वेस्ट करी सुनी पारिबे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस रे। वर्तमान सुनंतु आसंता काली अर्थात मे मास 28 तारीख गुरुवार दिन प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम सूचना। भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी शुणे 6:05 अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 49 भाग शुणिपारे 6:40 आमर स्वास्थ्य 7:10 विषय रही जीवाणुनाशक औषधर सदुपयोग ए विषय आलोचना करे डाक्टर निरंजन महांती 7:25 शुणे शुभ सकाळ मॉर्निंग मेलोडी शुणे 8:30 डायल इन लाइव चिट चैट रही 9:00 निर्धारित विषय रे फोन कॉल माध्यम रे निजर मतामत शेयर करी पारिबे। 9:30 शुणे प्रायोजित कार्यक्रम स्कूल टाइम बाय भारत मसाला 9:45 शुणिपारे ओडिया कथचित्र गीत रेनबो एसएमएस शुणे 10:00 दिन 11:00 रही कलाकार पुरुणा हिंदी चलचित्र गीत शुणिपारे 11:30 मध्याह्न 12:00 शुणे कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत आज चर्चार दिन 10:00 निर्धारित विषय एसएमएस किंवा ह्वाट्सअप जरिया निजर मत रखिपारे। पुरुणा ओडिया कथचित्र गीत शुणिपारे 2:45 अपराह 3:00 शुणे मो देश सुरिला आफ्टरनून शुणे अपराह 4:00 अपराह 5:02 रही कार्यक्रम डायल इन लाइव चिटचाट ए फोन कॉल माध्यम निजर मत रखिपारे। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 31 भाग शुणिपारे 6:10। भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणे 6:30 राति 7:25 शुणे कार्यक्रम संध्या आसर राति 8:02 शुणे गीतरे मितरे अभुला स्मृति शुणे राति 9:15 राति 10:00 निजर मनपसंद गीत

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं पञ्चशताधिक पञ्चविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम् देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानं अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति अथ वार्ताः विशदीकृत्य आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य षोडश वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै त्रिंशदधिक पञ्चशतोत्तर पञ्चविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं सबसे पहला जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे दूसरा फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिम मेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मलिति कृत्रिम मेधा चालितः वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरण मञ्चः अस्ति सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिम मेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मञ्चः वर्तते एवं च सक्षमः इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन तन्त्रमस्ति अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मन्त्रिमण्डल समित्या राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढ निर्णयः कृतः सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचनायोगेन प्रदत्त मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः पञ्चाशदुत्तर एकोनविंशतितमः चतुर्विंशत्यधिक त्रिशतम् अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेष गहन पुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम् यासु गतवर्षे जून मासे निर्वाचनायोगेन बिहार राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत् मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापित

0: पिते निर्णय पत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेष पुनरीक्षणाय आयोगं अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्य पुनरीक्षणस्य पारंपरिक प्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानं अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय संदेशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमंत्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेऽपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासित जनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमंत्री सर्वानेतेषु कष्टकर दिनेषु परस्परं करुणा प्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर अहिल्यानगरेभ्यः एतावता त्रयोदश आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉ मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्र भेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्य भूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाह वर्तते, यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्, यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः अंकीय संगणकाः दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीय विचारैः नवोन्मेषेण परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान् तथा च सुदृढ़ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्।

आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स ट्यून करी छंती 100.4 आकाश बानी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मो अच्छी आपनकर रेनबो साथी सुभी आपनका सहित विद द शो इवनिंग अपडेट्स काईंगे ना स्टूडियो घड़ी रे बाजे सारी छी राति 7:02
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ସୋ ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସର, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୋସ୍ତ ସୁଭି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମେସେଜ ଆମର ରେଗୁଲାର ଲିସନର ଆବାସ ସେନ, ରାଜକୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ, ବିମଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ମନୀଷ ଶର୍ମା କରିଛନ୍ତି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଭିଆପା, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ଭରା ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମସ୍କାର। ସୋ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପଦେ, रिश्ते दिल से बनते हैं बातों से नहीं, कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रह के भी अपने हो जाते हैं। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया कथा। लिखिछन्ति अप्पा, आज हमारे स्टाफ रुचिका राय को बेटा अभिषेक राय को हैप्पी वाला बर्थडे, तो तांको बहुत बहुत शुभकामना जन देवे। तो रुचिका राय को बेटा अभिषेक राय को पूरा रेनबो फैमिली तरफ रू हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू टाटा स्टील प्लांट रो जो मैंने भी आमको मेसेज करी थी, समस्ते आमर प्रोग्राम सुनुछंती एवं से ता सहित समस्त आरजे मानंकु एवं टुना भाई, रमेश भाई, उर्मिला अप्पा, मुन्ना भाई एवं विजय भाई को वेरी वेरी गुड इवनिंग जणिछंती। तो समस्त को पाखरे आपनकर मेसेज पहुंची दैथिबो ए गुड इवनिंग रो विश गुडी को। सो एमटी ही हमर साथे जोडी ही थांतु, हमकु सुन थांतु, हमकु भल पाइब दो थांतु आ कहु थांतु दिल से दिल तक।
1: मेरे ख्वाबों में तुम, बस तुम।

不迁都。School is a very good place. ए जिनिश ता आगरे उपस्थापन करन तो एंड ए द्वारा देखिबे से स्कूल जिबा को बेसी आग्रह प्रकाश करिवो एवं घरे ता सहित स्कूल स्कूल खेली मध्य अभ्यास करि परिबे आपण पालटि जिबे तार टीचर ताकु देबे तार फेवरेट स्नैक्स एंड ताकु सुनिबे तार फेवरेट पोएम देखिबे से आपे आपे ही माने छुआ आपे आपे ही स्कूल जिबा को रेडी हि जिबे।

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचली छी गीतरे मितरे मो अच्छी सुभी आपनक सहित फ्रेंड्स स्कूल जीवा पूर्वरु शिशु को तार निज ना स्पष्ट भाबे कहबा सिखांदु एवं बापा मां को नाम मध्य ताको जणा रहबा दरकार जदि परुछंती घरर फोन नंबर ताको मने रखाइबा को चेष्टा करंतु टीचर पचारे न डरी उत्तर देवाक कहतु एंड यू सूचना जदि पिले जाणी थाए तबे से ताकु सुरक्षित रहिबारे एहा सहाय्य करे ताकु घर भितरे न रखी अन्य पिलांक सह मिसांतु खेलिबा सिखांतु निज खेलना को बांटिबा बा शेयर करबा अभ्यास करंतु अन्य मानंक कथा सुनिबा एवं निजे कथा कहबा केते जरूरी ए विषयरे ताकु बुझांतु स्कूल जीवा पूर्वरु एई प्रस्तुति समय रे पिलांकु अधिक समय देबा दरकार ता मनरे जदि किछि डाउट अछि ताले सेटाकु भलो भाबरे मन ध्यान दे सुनंतु एवं बुझांतु ताको केबे भी स्कूल नारे डरांतु नहीं पिलांकु सबुबेले उत्साहित करंतु कि ताकु स्कूल रे बहुत ही मजा आसिबो बोली कहंतु आपणंक सपोर्ट एंड आपणंक हेल्प ही पिलांकु स्कूल जीवाकु डरबा नुहे बर स्कूल जाई मजा मस्ती करबा सिखाइब सो फ्रेंड्स आपण सहित कथा हो समय सरी जाइछि एठी ही एंड करबा को पड़ब सो गीतरे मितरे को एंड एंड करबा पूर्वर आपण पाखे पहुंचे दोछे आउ गोटे बहुत ही खास ब्यूटीफुल से ट्रैक आपण पाखे सो स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ 9 ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा, कहा यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु

0: 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति

को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का 1 डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का 1 शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave

वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर दिस न्यूज ब्रेक ट्यून करिछंती आपनकर फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाश बाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक अबुल स्मृति रो सोनी आपनक पखरे हाजिर हो जाई छी आपनकर म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी फ्रेंड्स ए हिंदी फिल्म गीतर मजा किछि ही अलगा आजिकाली भि गोटे सिनेमा रे केवल जणे हीरो नुहे सेते बेले किछि सिनेमा रे पूरा पलटन थिला सुपर हीरोज मानकर सिनेमा परदारे एते बड़ बड़ कलाकार को एकाठी देखि दर्शक पूरा पागल हो जाउथिले आउ से समय रे हॉल रे जो ताली आउ सिटी माड़ हेउथिला सेटा आजर मल्टीप्लेक्स रो जमाना रे केबे भी मिलिबनी

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

म्यूजिकल योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो हटिरे समय वर्तमान राती 10:00 बजे गोटे मिनिट 6 सेकंड स्टूडियो घड़ी जेतेबेले समय हुए राती 10:00 आसी जाए सेतेबेले आपणकर ढेर सारा म्यूजिक रा रिक्वेस्ट माने मन पसंद गीत रा रिक्वेस्ट रा पिटारा एंड आपणकर पाखरे हाजिर अछि सुभी आपणकर से मीठा मीठा रिक्वेस्ट

ଗୁଡିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ ଯାଏ। स्टार्ट ही जाइछि रेनबो एसएमएस रबर्ट जो माने आज हम सहित न्यू करी जोड़ी हे छेंती से मानको पई कहि रखु छी आपने चाहिले एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिया रे आमकु म्यूजिक रिक्वेस्ट करि पारिबे जो म्यूजिक के आपनकर क्लोज टू हार्ट। सो आपने हमकु व्हाट्सएप करि पारिबे हम नंबर 8895254200 रे नहले आपनकर एसएमएस बॉक्स को जाय लिखि दियंतु एफएमआरसी स्पेस दे लिखि दियंतु आपण सुनिबा को चाहंतबा गीतटी एहा के मूवी बा के एल्बम रो रहिछि लिखि निजो ना एवं ठिकाना लिखि पठि दियंतु 09495963210 नंबर रे। सो ऑलरेडी आपण मानंगर ढेर सारा रिक्वेस्ट आसी पहुंचि जाइछि मो पाखरे। सो चलो तो गोटे परे गोटे प्ले करि दबा आपणंगर मन पसंद रा गीत एंड सो को करि दबा पूरा धमाकेदार।

ट्यून कर शंदे 100.4 आकाश बाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो जाय छी रेनबो एसएमएस रो एवं आम पखरी ढेर सारा रिक्वेस्ट असे पहुंच जाय छी सो रिक्वेस्ट गुडी को कर छंती शशिधर नायक राजबाटी नगर आठकोट रो सुनबा को चाहि छंती नींद भरा राती मधु झरा जह्न अनुताप कथा चित्र रु एवं परे परे आम को रिक्वेस्ट कर छंती नरगुड़ा छत्तीसगढ़ रु सुनबा को चाहिछंती महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी मूवी प्यार ही प्यार रो गोटे बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक एवं फिल्म कृष्णा रु अभिजीत का आवाज रे सुनबा को चाहिछंती गीत टिकु दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ रु हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेन्द्र मणि वर्मा एवं नोखेलाल वर्मा सो समस्त गीत गुड़िक पहुंची दूसरी आपण स्टे ट्यून दिल से दिल तक।

0: ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜି ସମୟର ପାବନ୍ଦିରୁ ହେଉ ବା ସଙ୍ଗର ଅନ୍ଆଭେଲେବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦେଇପାରି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ ସେ ସରି। ବଟ୍ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଣ୍ଡ କାହାକୁ ବି ସ୍ୱିଚ୍ କରନ୍ତୁନି, ଜମା ବି ଅଭିମାନ ମାରନ୍ତୁନି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ରେନ୍ବୋ SMS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶର୍ମା। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद

0: 2024 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में

तुम्हारी पाद पद्म को स्मरण करी दिन र आरंभ हुए। जे संतान र मंगल कामना करी ताको सठिक बाटरे कढ़ी नियंती सी हेले मा बाट मंगला। तांकु उपासना कले मनुष्य जे निज लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबा सुनिश्चित एथिरे संदेह नाही। आजिर अर्घ्य थाली सेई मंगलकारिणी मा बाट मंगलांको समर्पित जहाको आपण सुनि परछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकरे म्यूजिक मित्र अनुसह दिल से दिल तक।

उचित मार्ग देखाइथिले। तांको कृपारु ही ब्रह्मदेव दर्शन पाइथिले जगत पालक प्रभु नारायणंकर। यहाँ परर कथा तो कहिबा बाहुल्य, समस्ते जानती परे परे आरंभ हैला सृष्टि रा। तबे

सुनचन्ति भक्ति गीतर अर्घ्य थाली म्यूजिक मित्र अनुसह 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे दिल से दिल तक। आजि आमे कथा होचे मा बाटमंगळांक संपर्क रे। मा पद्मासनरे विराजिता, तांकर तीनोटी आखि एवं हातरे रहिचि पाश एवं अंकुश। एठारे दशहरा पूजा हेबा सह चैत्र मासर प्रत्येकटि मंगलवार जहाकु आमे बाटमंगळांक ओषा बा पंथेई पूजा बोली कहंती, ताहा बहु आडम्बररे पालित होइथाए। दर्शनार्थीक सकाशे एठी कहि रखे, मंदिरटि साधारणतः अर्थात बाटमंगळांकर मंदिरटि साधारणतः सकाळ 5:00 रु राति 10:00 जाए खुला रहे।

0: हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
0: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: वर्तमान सुनंतु आमर स्वास्थ्य। आज एथिरे सुनिबे आम खाद्य केते पुष्टिकर, कहिछंती डाक्टर रीतांजलि प्रधान।
3: जीवन धारण पाई खाद्यर आवश्यकता रहिछि एवं सेथिरे पुष्टिकर खाद्यर गुरुत्व बहुत बेसी। आम खाद्य पदार्थ जे केते पुष्टिकर से विषयरे धारणा बेसी नथाए। बजारर मिलुथुवा फास्ट फूड पाटी को सुआदिया लागिपारे, ताहा आम शरीर पाई पुष्टिकर कि अपुष्टिकर आमको जणा नथाए। जणे साधारण मनीष पाई दैनिक 1600 2000 कैलोरी युक्त खाद्यर आवश्यक होइथाय। आम खाद्य पदार्थ को 6 प्रमुख भागरे विभक्त करा जायछि, जता कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, प्रोटीन, विटामिन ओ पानी। एही पोषक तत्व को आहुरी मध्य वर्गीकृत करा जाय पारे, जथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ओ पानी माइक्रोन्यूट्रिशन ग्रुप रो होइथिबा बळे विटामिन ओ खनिज माइक्रोन्यूट्रिशन ग्रुप रो। माइक्रोन्यूट्रिशन संरचनात्मक सामग्री जथा एमिनो एसिड रु प्रोटीन पर्यंत निर्माण करिथाय ओ लिपिड रु कोशिका झिल्ली एवं किछि अणु रु निर्माण करिथाय एवं एहा शक्ति मध्य प्रदान करिथाय। एहा को कैलोरी द्वारा मपा जायथाय। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ओ प्रोटीन रु प्राय 5 कैलोरी शक्ति मिलिथिबा बेले प्रति 1 ग्राम वसा रु 9 कैलोरी शक्ति मिलिथाय। खाद्यर आउ एक विभाग मध्य रहिछि ताहा फाइबर। शरीर रे जंत्रिक ओ रासायनिक प्रक्रिया पई एहा आवश्यक होइथाय। अधिकांश खाद्य पदार्थ रे विभिन्न प्रकारर विषाक्त पदार्थ रूप रे अन्य पदार्थ ओ किछि पोषक वर्गर मध्य मिश्रण होइथाय। किछि लोकंकु खाद्य भाव जनित रोग देखा जाउथवा बेले किछि लोकंकर मोटापा आदि रोग मध्य देखा जायथाय। जणे वयस्क व्यक्ति पई पुष्टिकर खाद्य हिसाब रे साधारण दैनिक 2875 किलो कैलोरी युक्त खाद्य आवश्यकता होइथाय। सेथिरो प्रोटीन 60 ग्राम, कैल्शियम 400 ग्राम, आयरन 25 मिलीग्राम, विटामिन ए 600 मिलीग्राम, थायामिन रो आवश्यकता रहिछि 1.2 मिलीग्राम, राइबोफ्लाविन 100 मिलीग्राम, नियासिन 16 मिलीग्राम, अस्कर्बिक एसिड बा विटामिन सी रो आवश्यकता रहिछि 40 मिलीग्राम एवं फॉलिक एसिड रो आवश्यकता रहिछि 100 मिलीग्राम, विटामिन B12 रो आवश्यकता रहिछि 1 मिलीग्राम। पुष्टिकर भोजन आमे काहा को कहिबा, जेहु खाद्य ठीक भाबरे पाचन होइ परुथिबो सेपुले खाद्य खाइबा आमे उचित। भोजन रे कंचा परिबा को सलाद आकार रे निश्चय खाइबा दरकार। रंधा खाद्य रे मध्य सबुज पनीपरिबा रहिबा दरकार। एथिरु विटामिन, खनिज, लवण अधिक परिमाण रे पाई परिबे एवं अधिक पनीपरिबा खाइबा द्वारा अमर फाइबर जिंस मध्य आमे पाई परिबा। गाजर, बीट, प्याज, अदा, बंधाकोबी, काकुड़ी, धनिया पत्र एवं पालंग साग, मूला आदि रु कंचा खिया जाय परिबो एवं एहा आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति को मध्य बढ़े दे थाए। सबबेले ताजा पनीपरिबा खाइबा उचित। परिबा मध्यरे सबुज परिबार अधिक व्यवहार करिबा दरकार। ऋतु अनुसारे मध्य परिबा व्यवहार करिबा उचित, कारण एहा प्रकृतिर अनुकूल ओ पुष्टिकर होइथाय। फलर व्यवहार अधिकरु अधिक करा जाय परिबो। व्यस्तता मध्यरे भोजन नकरी आराम रे खाइले खाद्य ठीक भाबरे पाचन होइथाय। गोटिए रोटी तयारी करिबारे 1 घंटा पूर्वरु अटा दळी रखिबा आवश्यक। एहा द्वारा रोटी हालुका एवं शीघ्र पाचन युक्त होइथाय। भोजन करिबा समय रे पानी पीबा अनुचित, जदि पानी पीबा ताहले अति कम पानी पीबा आवश्यक। शारीरिक परिश्रम करुथिबा व्यक्ति छडा अन्य माने कम तैलयुक्त खाद्य खाइबा आवश्यक।
2: आमर स्वास्थ्य रे सुनुथिले आम खाद्य केते पुष्टिकर, कहुथिले डाक्टर रीतांजलि प्रधान।

पलकें झुकाकर सलाम करते हैं, हम तहे दिल से आपके लिए दुआ करते हैं। कबूल हो तो मुस्कुरा देना, हम ये प्यारा सा दिन आपके नाम करते हैं। तेणु चलतु ना ए नुआ दिनटीर आरंभ करिबा शुभ सकाळरु म्यूजिक मित्र अनुसह दिल से दिल तक।

सुन रहे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक वर्तमान सुनंतु एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा मन की बात शीर्षक भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन शुणीपारे मई मस 31 तारीख रविवार दिन 11:00 समय आकाशवाणी सब केन्द्र विविध भारती सेवा डीटीएच सेवा एफएम सेवा एवं आकाशवाणी अधीनस्थ गोष्ठी बेतार केन्द्र में प्रधानमंत्री मनर कथा शुणा मिल राज्य समस्त आकाशवाणी केन्द्र मन की बात ओडिया भाषातर प्रचारित हो सही दिन 31 तारीख रविवार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन ठीक परे एवं पुणि थे सही रविवार राति 8:00 समय जो श्रोतबंधी मन की बात निज निजर मतव्यक्त करने को चाहती से प्रधानमंत्री कार्यालय वेबसाइट mygov.in टोल फ्री नंबर 1800 11 78 00 फोन करी मत रेकॉर्ड करी परिवे घोषणा टी इतिग्रेस सहला।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं आप भी लगवा लीजिए 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर

ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का चक्को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु आसी जाए आपण को पाख को नहीं मॉर्निंग मेलोडी

पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। आज कर आश्चर्य लगुनि एपरी कथा कारण जी भी ए मनीष को छाय प्रदान करे सी प्रथमे कटा हुए से तेणी की गच्छ हो मनीष हेले ए कटाकटी व्यापार रे मनीष भूली जाउची दिने सी भी अकाल रे चली जीव जदि एई भली व्यापार सब लागी रहे तेणु साथी गच्छ कटा को फुल स्टॉप दियंतु आउ गच्छ लगांतु ए संपर्क कथा हवा आग को एबे सुनिबा आ गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक दिल से दिल तक।

साथी आमे कथा होतले गछ संपर्क करे आज जदि आमे निश्वास प्रश्वास नौचे तेबे गछ पाई आज जदि आमे बंचिछे तेबे गछ पाई गछ आउ आमे एक्चुअली कहिया को गले गछ आमो बिना बंचि परिबो किंतु गछ बिना आमे बंचि परिबा नाही गछ बिना आमर अस्तित्व ही नाही तो फ्रेंड्स निश्चित रूपे आजिका डेट रे जदि फ्यूचर जेनरेशन गोटे भल लाइफ आपण तांको दबाको चाहुचंती तबे गछ निश्चय लगांतु आउ मो प्रश्नर उत्तर तो आपण देई सारिछंती माने आज सकाळर प्रश्न आपणको पचारथली एक्टर दिलीप जोशी होउछंती माने जणे ग्रेट एक्टर एवं तांकर आज हैप्पी वाला बर्थडे एवं से अभिनय करथिले चलचित्र हम आपके हैं कौन रे जोथरे लीड रोल रे थिले सलमान खान एवं माधुरी दीक्षित एवं पचारथली आपणको जे हम आपके हैं कौन रे तांको कैरेक्टर

ना कौन थिला तंको कैरेक्टर रो ना थिला भोला प्रसाद आउ आमो पाकु अनेक सठिक उत्तर को आसी की पहुंची छि सतो किंतु आमो को जे प्रथमे लेखी की पठे जंती से हो जंती कृपा सिंधु कवि भुवनेश्वर रुत्सो कांग्रेचुलेशंस कृपा सिंधु कवि आपण हेई परचंदि आज सकाळ रो श्रोता ता छडा आमो पाकु को सठिक उत्तर लेखी पठे जंती रमेश चंद्र साहू और खुमा ढेंकनाल रू ताछड़ा सठिक उत्तर लेखि पठे छंती आभास सेन टाटा स्टील प्लांट रू एवं ताछड़ा आम पाख को सठिक उत्तर लेखि पठे छंती प्रभाती मिश्र सालेपुर कटक रू क्षितिज चंद्र कर सीडीए सेक्टर 11 कटक रू ताछड़ा दिवाकर सेठी कटक रू एवं उर्मिला सेक्टर 11 सीडीए कटक रू मध्य सठिक उत्तर लेखिकि पठे चंती एवं धीरेन पुजारी सालेपुर कटक रू मध्य हमको सठिक उत्तर लेखिकि पठे चंती बहुत बहुत धन्यवाद आपण एते मात्रारे आम सहित जोड़ी हेचंती एवं सठिक उत्तर मते लेखि पठेचंती तो आगो को बढ़िया समय गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक आ पर आसी पुणी कथा हेबी आपण सहित दिल से दिल तक इन डायल इन लाइव चैट चैट।

रोकटोक नाही, जहाँ चाहिब जणे करिपारिब। लागे जेमती पूरा से मामू घर राजा होचे मु नहीं कि तो ये एक्सपीरियंस एटा केबे भी मनरु भूली हुएनी। पिलादानर स्मृति सबुबले साइता हेति रहिथाय मनरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपण एते मात्रा ने हम सहित कथा हेले एवं निजर एक्सपीरियंस शेयर कले। आगुकु बढ़िबा सुनबे गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक आ पुणी आसीबी आपणक पाखकु रेनबो एसएमएस नै। एमति रहिथान तो हम सह दिल से दिल तक।

तेजादी ट्यून कर जानती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु आज रही छे अपन को सहित ने रेनबो एसएमएस प्रथम गीतटी रेनबो एसएमएस रे जी बी रिक्वेस्ट करछंती निश्चय कहबे हेले ता पूर्वरु कहि रखे जो माने एबे बे ट्यून करछंती आमको न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे भी आउ 100.4 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी माध्यम रे समस्तंकु गोटाय अनुरोध आपन जदी निज मन पसंद रो गीत किछे सुनिबा को चाहछंती तबे आमा पाखो को एसएमएस करंतु नहले व्हाट्सएप करंतु टाइप करंतु एफएमआरसी स्पेस

उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु सुनिबाकु चाहिसंती आल्बम आउ केते दिन रो गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक जाउ गाइचंती मोहम्मद अजीज आउ ता सह से माने आकाशवाणी रो नववर्ष पूर्ति उपलक्षे समस्तंकु शुभेच्छा जणाइचंती।

Welcome back once again. Tune korchhen 100.4 Akashvani FM Rainbow Katak dil sa dil tak sojali chi kalakar. Ha sathi. Pare se baghi chalachitra re geeta ek chanchal sahe hasina tanga bishesh lokapriyata deithla. Jaha eha pare pare Bollywood re ek parichita nama madhya hoithla. 1990 दशक रे तांकर अनेक गीत बहुत सुपरहिट मध्ये होइतला जेमिति की रोमांटिक गीत गाइबारे से विशेष प्रसिद्ध लाभ करितले. हां साथी अभिजीत का गाने रे का विशेष दिग हेउची शाहरुख खान का पई तांक गीत गुडी का यस बॉस बादशाह चलते चलते मैं हूं ना दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे परी चलचित्र से अनेक सुपरहिट गीत मध्ये गाइथले. ओले ओले तुम्हें जो मैंने देखा वादा रहा सनम चांद तेरा सुनो सुनो ना परी गीत आज मध्य लोकप्रिय अनेक श्रोता मन मध्य मन करन जे शाहरुख खान का पर्दा अभिनय सह अभिजीत का कंठ बहुत भला मेड़ खाउथला.

वेलकम ब्याक वन्स अगेन ट्यून करछेंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम डनबा कटक दिल से दिल तक सो चली छी कलाकार हां साथी अभिजीत केवल हिंदी नहि बंगाली ओडिया भोजपुरी मराठी और अन्यन्य भाषार मध्य गीत गाइछेंदी तंका कंठर माधुर्य भावथिबारु समस्त भाषार श्रोता तंको बहुत पसंद करंती से 6000 रु अधिक गीत और 1000 रु अधिक चलचित्र पई गीत गाइछेंदी

100.4 जिमिति की जोने शिक्षक तांकर हसरे छात्र छात्रिन को प्रेरणा देई परंती जोने मां तांकर हसरे संतानर दुख दूर कर दियंती जोने बंधुर हस आमो जीवनर कष्ट को हालुका कर दी हस त हेउची एही परी संपर्क ना हस हेउची गोटे संपर्कर सेतु परी देखंतु ना बंधु जेमिति की गां परिवेश रे हसर भौरी अधिक सुंदर लागे नाकण कहउचंती ए जेमिति संध्या बेले गां रो चौपाळ रे लोक माने बसी हस कथा कहउथिबा दृश्य आम मन को आनंद देइथाय छोटे छोटे पिला माने खेळुथिबा समय रे जेते बेले हसंती समग्र परिवेश मध्य खुशी रे भरि जाय ए जेमिति पर्व परमाणी समय रे मध्य लोक मानन को मुह रे हस एक अलग आनंद सृष्टि करे हस एही भौरी को गांव को जीवंत सुंदर करी दिए

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछनी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छे केछि कथा केछि गीत साथी हसर भौरी केवल

0: मकसद की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कौन रीमा, घरे सोलर लगे देला?
2: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
1: चिंता नहीं माने?
2: हाँ अपा, सोलर करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीव।
1: सतरे?
2: खाली सेती किनु? हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार कले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
3: आज्ञा हाँ, PM सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। PM सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।